0: नागरिक एफएम 107.5 MHz वॉइस ऑफ द पीपल।
1: नागरिक टाइम चेक
2: अहिले बिहानको 11 बज्यो।
3: यस टाइम चेकका प्रायोजक गोल्ड रिङ चिया।

0: नायक चियाको अपार सफलतापछि अब बबी मसला चिया बजारमा सर्वत्र उपलब्ध छ।
1: हजुर, कडा रंग मिठो स्वाद भएको नायक चिया सधैं प्रयोग गर्नुहोस्। भद्रपुरबाट उत्पादित आफ्नै चिया नायक चिया।
2: भद्रपुरका पुराना स्वास्थ्य कर्मी बलदेव शाहद्वारा सञ्चालित शाह क्लिनिक नवीन मेडिकल हलमा अब मेची अञ्चलकै पुराना र प्रसिद्ध वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डाक्टर पीताम्बर ठाकुरको दैनिक सेवा साँझ 5 बजेदेखि। पेट, छाती, मुटु, नसा, सुगर, प्रेसर, जन्डिस, थाइराइड, मृगौला रोग विशेषज्ञ सेवाका साथै डाक्टर मनोज कुमार शाहको सेवा प्रत्येक बिहान 8:30 देखि 9:30 सम्म।
3: एपेन्डिक्स, हाइड्रोसिल, पाइल्स, फिसर, फिस्टुला, स्तन सम्बन्धी, पित्तथैली, हर्निया, पथरी, गाँठा गुठी, चिरफार विशेषज्ञ, वरिष्ठ जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन डाक्टर विनेश झाको सेवा। प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरबाट छाला, चर्म, यौन रोग तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ, MBBS, MD, डर्मालोजी डाक्टर निस्तुक बराल। प्रत्येक शनिबार दिउँसो 3 बजेदेखि 4 बजेसम्म। नवजात शिशु तथा बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर आकाश घोष। प्रत्येक दिन बिहान 7:30 बजेदेखि 9 बजेसम्म र बेलुका 5 बजेदेखि 8 बजेसम्म।
2: अब हाम्रै भद्रपुरमा विशेषज्ञ सेवा लिन आउनुहोस्। शाह क्लिनिक नवीन मेडिकल हल, भद्रपुर 5, भद्रपुर बजार। फोन सम्पर्क 98049-72085, 023-525-353। 1 घण्टा अघि नै बिरामीको अग्रिम नाम टिपाउन सक्नुहुनेछ।
0: एक 107.5 मेगाहर्ज जन जन को बोली।

0: नागरिक एफएम 107.5 MHz वॉइस ऑफ द पीपल।
1: नागरिक टाइम चेक
2: अहिले दिउँसोको एक बज्यो।
3: यो टाइम चेकका प्रायोजक गोल्ड रिङ चिया।

0: नागरिक एफएम 107.5 MHz वॉइस ऑफ द पीपल
1: नागरिक साइंसिक
2: अहिले दिउँसोको 3 बज्यो
3: यस टाइम चेक का प्रायोजक गोल्डन चिया

0: नागरिक एफएम 107.5 मेगाहर्ज वॉइस ऑफ द पीपल
1: नागरिक सेंसिक
2: अहिले दिउँसोको 4 बज्यो
3: यस टाइम चेक का प्रायोजक गोल्डन चिया

0: नागरिक एफएम 107.5 मेगाहर्ज वॉइस ऑफ द पीपल
1: नागरिक टाइम चेक
2: अहिले अपराह्न 5 बज्यो
3: यस टाइम चेक का प्रायोजक गोल्ड रिंग चिया

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: नागरिक एफएम 107.5 मेगाहर्ज वॉइस ऑफ द पीपल।
1: नागरिक टाइम्स। अहिले साँझको 5:30 बज्यो।

0: नागरिक एफएम 107.5 मेगाहर्ज वॉइस ऑफ द पीपल
1: नागरिक टाइम चेक
2: अहिले साँझको 7 बज्यो। यस टाइम चेकका प्रायोजक गोल्डन चिया

0: नागरिक एफएम 107.5 MHz वॉइस ऑफ द पीपल।
1: अहिले साँझको 8 बज्यो। यस टाइम चेकका प्रायोजक गोल्ड रिङ चिया।